इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी, पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वल आया ताकि देखदा है एक आदमी सुता पे ते पैर उस दे मेहराब वल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वल मुंह करके पढ़दे हन, मक्के वल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नु गुस्सा चढ़िया ते आके उस सुते आदमी नु लत मारी ते कहा तू कौन है जो खुदा वाल पैर

शरीफ वांग हुंदा सी। इन्हां दे आजान ते सन्मान करने नाल अरब दे होर देशां दे आए हाजी जो हुण आले दुआले आ रहे सन अदब विच बैठ गए। गुरु जी का जवाब सुन के ते वरत्या ए कौतुक के मक्का घूम गए। सारे सन्मान करन लग पे।

सचमुच दा उलमा हो जाएगा। त्याग कर आस अंदेसे दा ते दिलगीरिया दा, मन विच दया दा निवास रख। कुफर तकबर त्याग दे, काम अग्नि दे भांबड़ तो मन बचाओ ते शीतल सुख दा जाणू हो। इउं कर बंदगी रोजे रख, तां तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकनदीन सलाम कीता आख्या वाह वाह, अज खुदाए दे

दुनिया का असर डड है, खुदा किस तरह मिलता है। ये सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबा दा प्रीतम सी, नैन उचे हो गए ते डाढे मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप

तू वड्डा है, करीम है, दया करने वाला, बेऐब है, तेरे विच कोई ऐब नहीं, तू दुनिया नु पालन वाला है। ए दुनिया मुकामे फानी, ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानक बगोयो जन तुरा तेरे चाकरा पाखा दुनिया खत्म होने वाली। ओ धर्म राजा तो वाला तो फड़ के ले जाओगे।

नानक गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे।

मक्के अंदर पूज कराई। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी दियां खड़ावां यादगिरी ते जियाहत वास्ते रख ली। इस गल की गवाही

लिखते हैं कि इन्होंने काबे बाबत अपने दिल विच कुछ अयोग ख्याल किए। जद काबे की प्रदक्षिणा करन लगे तद इन्होंने तकिया कि काबा अपने नीहां समेत अपनी जगह तो उठ के आकाश वल टुर पिया। काबे ने यह निश्चा कर लिया कि वह मेरे ते डिग के मैनू मार देवेगा। काबे मैनू इथों तक

एक ही घटना हो गई है, शायद मेरी अखां विच खलल आ गया है। आकाशवाणी हुई, तेरी नजर विच फर्क नहीं पिया, कब एक कमजोर तीवी नू, एक कमजोर औरत नू दर्शन देन गया है, उदे स्वागत ले गया है, जो इस पास से आ रही है।

ना तो केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल की तरह मनते हैं। जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करते हुए

एक खंड एक ग्रह लभने उस होर ग्रह निकल आंदा ओनू लभने होर निकल आंदा पर तन गुरु नानक साहब ने कई सौ साल पहला ही यह कह दिता पाताला पाताल लख आगासा आगास एक कोई धरती कोई आकाश नहीं होर भी बहुत कुछ है लखा ही आकाश लखा पाताल खंड ब्रह्मांड नहीं जिदा कोई अंत नहीं पा सकता और साइंस इस गल

कटोरा समंदर में सुट दिता, कटोरा डुब गया। वो लड़का टप्पण लग पया, खुशी नाल नचन लग पया। फकीर कहन लगा, काका कटोरा तेरा डुब गया, तू हसना क्यों? उस लड़के ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा फकीर मैं घरों कटोरा लेके आया, इस कटोरे विच समुंदर दा पानी भर लवा। सवेर दा लगा सी पर कटोरे विच सारा समुंदर मैं ना भर सके। तेरे ख्याल आया जे कटोरे विच समुंदर दा पानी नहीं आ सकदा, कटोरा तां समुंदर विच समा सकदा है। मेरा कटोरा समुंदर विच समा गया, मेरी चिंता खत्म हो गई। उस फकीर ने उस लड़के दे पैरां दे मत

अपने इस दिमाग दे विच उस परमेश्वर दी कायनात उस परमेश्वर नूं भर लवा उहदा अंत पा लवा पर हुण पता लगा उस मंदर दी थरा अथाह है उहदा अंत कोई नहीं।

जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद का निग मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ही कीर्तन दरबार जो नवे साल की आमद से करवाया जा रहा है, इस विच रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी जत्थे आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा

सच दे रस्ते ते तोर के अनेकां जीवां दा उधार कीता। एथे ही बस नहीं गढ़ बगदाद, जो पीरां दा गढ़ सी उस बगदाद विच भी जाके आपने सच दा उपदेश दिता। आख्या अकाल पुरख दी लीला दा कोई अंत है? तुसी क्या ए सच मनदे हो? सत पताल ते सत आकाश हन, इस तो परे होर कुछ नहीं। बाबे ने आख्या नहीं लख पाताल आकाश लख, लखा ही आकाश हन, ते एथे ही बस नहीं, फिर पता नहीं कितने को होर भी हन। ते बाबे ने अपनी अजबत ते नाल ओ लखां पताल ते लखां आकाश अखी विखा के अकाल पुरख वाहिगुरु दी बेअंत लीला नू प्रत्यक्ष करके दिखाया। सारा बगदाद आप दे चरना ते झुकिया, मदीने ने आप जी दे चरना ते सजदा कीता, मक्के विच जाके सच दा राह दर्शाया। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह ए रमणन करके ते फिर आज किथे पहुंचे हन? भाई साहब गुरदास।

बड़ा दुख होया मन बड़े क्रोधित होए मन विच रिसक गनेरी खाई आख्या ए कितरों आ गए हन भगतियां पाई भगत आन लोटा जोगी लिया छपाई बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जह लुकाई वेख चरित्र जोगी खुनसाई ए चरित्र वेख के योगियां ने बड़े मन विच क्रोध कीता रास तारियां ने आके रास पाई ते जो लोग खुश होके इन्हां नूं दे रहे सन जिस लोटे विच

फिर उदासियां वाला भेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी भंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा ले हन, इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। इसका जवाब दियो तां धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, नानक।

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो।

अपनी वाजूही। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये रब दा, वाहिगुरु दा, राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है, एक पासे कहिंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे होण ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन

ऐसा उपदेश गुरबाणी दा अपने धर्म च पक्के रहो। तुसी जिस धर्म नूं भी मनदे हो पर असल विच धर्मी ओह है जिहड़ा सब नाल प्यार करे, क्योंकि धर्मी किसे नाल नफरत नहीं कर सकता। गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे कीर्त करनी, नाम जपना और वंड छकना, यह उपदेश है। और यही उपदेश सारिआं वास्ते सांझा है। अणख नाल जीओ, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होण दा मतलब यह नहीं कि आपां दूसरिआं नूं माड़ा कहिए या दूसरिआं दी निंदिआ करिए। कमियां हुंदिआं हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान दा फर्ज बनदा है। जिस वेले धन गुरु नानक साहब दा अवतार होया, ए झगड़े उस वेले भी सन। ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई।